0: सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
1: आज तक शमा पे परवाना मरता था, लेकिन आज परवाने पे ये शमा मरने को तैयार है।

नहीं, मैं नहीं आ सकता। वो डैड ने मुझे मैनिक्विन आज ही दुकान पे पहुंचाने के लिए बोला है। अच्छा, मेरा इंतजार कर रही हो? ठीक है, कोशिश करता हूँ, आता हूँ।